0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
2: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman As-Sudais and Sheikh Saud As-Sudais.

0: Drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. AGOSH UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है, आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: With you 24 hours a day. Inspire. I have

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे, मजा आ जाए मौला।

0: और ये जो डर है ये एक साय की तरह इंसान के साथ किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहता है। नई ख्वाहिशें, नए अंदेशे, ये जन्म लेते रहते हैं इंसान। और नए अंदेशे, नई ख्वाहिशें तख्लीक करते हैं। ख्वाहिश के न पूरा होने का डर हर ख्वाहिश के बातन में मौजूद रहता है, और डर के बावजूद इंसान ख्वाहिश को नहीं छोड़ता। बेयकीनी की फजा और गैर यकीनी हालात में इंसान को जो है वो अंदेशे अता किए हैं। जिंदगी का चिराग मौत की आंधी की जद में रहा है। मौत से ज्यादा खौफनाक शय मौत का डर है। ये डर जिंदगी को घुन की तरह खाए चला जा रहा है। इंसान जब ये सोचता है कि उसकी हर चीज उससे छिन जाएगी और वो औजा और कुर्बा का जो है वो छोड़कर खाली हाथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ अकेला ही रवाना कर दिया जाएगा, तो वो खौफ ज़दा हो जाता है। मौत का अमल तो जिंदगी के अमल के साथ ही शुरू हो जाता है। बचपन बचपन में ही मर जाता है और जवानी खत्म हो जाती है। बेनाई के चिराग मदहम हो जाते हैं। इंसान की आंखों के सामने महबूब और मानूस चेहरे रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। नक्शे, जुग्राफिये और तारीखें बदल जाती हैं। आरजुएं हसरतें बन जाती हैं। मौत सिर्फ सांस या आंख के बंद हो जाने का नाम नहीं सामी, हर आरजू की मौत है, बल्कि अजीजों की मौत है, अपनी मौत है, रिश्तेदारों की मौत है। वो जिनके हाथों में हम पले हैं उनको मोस्टली, जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि वो हमारे हाथ में जा रहे होते हैं। जिनके साथ खुशियां बरसती थी उनको अपने हाथों से दफना रहे होते हैं। वाबस्तगी और ताल्लुक मौत अपनी मौत है। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद जिंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। बेमकसद इंसान बेखौफ नहीं हो सकता। बामकसद और बामाना जिंदगी मौत के डर से बेनियाज होती है। अगर हमारी अल्लाह से दोस्ती हो जाए, हमें कुछ काम करने का मौका मिल जाए, मौत के डर के अलावा आज की जिंदगी को और भी कई खतरात का डर रहता है। हम अपने अमाल की इबरत से डरते हैं। हमें उस दिन से खौफ आता है जब राज फाश होंगे और बदअमालियां चेहरों पर लिखी जाएंगी, जब मुजरम की जबान खामोश कर दी जाएगी और मुस्तनद गवाहियां उसके खिलाफ रतबुल लिसान होंगी। वो दिन किसी दिन में भी आ सकता है। इस खौफ से निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तौबा है। आप तक अगर कोई बात पहुंचती है, किसी का कोई राज पहुंचता है, तो उसको संभाल कर रखें, उस राज को राज रखें, कल आप बचेंगे। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें अगर कोई बात मिल जाए, तो ये लफ्ज तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन हम जब तक उसको दूसरों तक पहुंचा ना सके, हमारे पेट का दर्द खत्म नहीं होता। आज किसी का पर्दा रखेंगे, कल अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। आज किसी के साथ ज्यादती करेंगे, कल आपके साथ ज्यादती होगी। किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। सामी नबी, हमारा वक्त जो है वो ब्रेक की तरफ जा रहा है, और ब्रेक के उस पार इंशाल्लाह थोड़ा सा टच जो है वो हम पोइट्री, उर्दू शायरी को देंगे इंशाल्लाह, और फिर प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जो है वो जारी सारी रहेगा। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम। अगर आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं या अपने टेक्स्ट मैसेज में इरसाल करना चाहते हैं, तो आप हमें अपने मनपसंद की कुनात नशी सुनना चाहते हैं, तो भी आप हमें व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमेशा आपकी तरह जो है वो जाना पहचाना है, 0777-9481-822। इसी तरह फ़ोन नंबर कॉल्स के लिए 0158-248-182। चलते हैं ब्रेक की जाना पर मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum, my name is Abdul Razak.
3: My name is John Islam.
4: My name is Zuhaj.
5: My name is Hussam.
6: And I'm Tahan.
5: We are here at Hokkan Rung Masjid
2: for the Kids Inspire competition.
3: And you are listening to
6: Inspire FM
4: on 105.1 FM.
7: Did you see that guy on TV?
8: What, that No Comment guy?
7: Yeah, he was sick. What was his name?
8: I think it was Atiq Malik.
7: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
7: Liberty Law, there when you need us most.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقمل الإيمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his Iman.
12: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
13: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
14: Assalamu alaikum and hello, I'm Laura Conda and I'm the host of the new podcast News and Culture Show. We're going to be talking about all the latest news from around Luton, all the amazing things that are happening in arts and culture and events across the town. You'll be able to catch up and find out what you're doing this week, where you can be going and what is happening in our town, and we really want to hear from you, so please do get in contact and let us know your thoughts every week on Inspire FM.
15: Every Wednesday at 6 p.m.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

तेरी आजमाइशों से हूं बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। तेरी राह में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं दूर है, ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी जिंदगी में फतूर है। तेरी राह में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं दूर है, ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी बंदगी में फतूर है। ये खता है मेरी खता, मगर तेरा नाम भी तो गफूर है।

मट्टी से बना था, मट्टी ही बन जाऊंगा। मट्टी से बना था, मट्टी ही बन जाऊंगा। इससे आगे कुछ न कर पाया, न कर पाऊंगा। रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा। रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा। पैरों की धूल हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। पैरों की धूल हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा। जब दुनिया तेरी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा।

हर्फ गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीजान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर कि परखा गया गलत।

ये आपने भेजा। आपकी नज़र करता हूँ, यूँ तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही की नज़र करूँगा। आपका नंबर एंडिंग होता है 30 पर। बारिशों का मौसम है रूह की फ़िज़ाओं में, बारिशों का मौसम है रूह की फ़िज़ाओं में, गमज़दा हवाएं हैं बेसबब उदासी है इस अजीब मौसम में, बेकरार लहजों की बेशुमार बातें हैं, अनगिनत फसाने हैं ये बहुत खामोशी से दिल पे सहते फिरते हैं, और बामरे मजबूरी सबसे ये कहते फिरते हैं, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम।

जिंदगी इंसान की एकदम के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी इंसान की एकदम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर शमा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, खुल गया जिस्म तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। जायरा ने काबा से इकबाल ये पूछे कोई क्या हरम का तोहफा, जमजम के सिवा कुछ भी नहीं।